सत्संग मिले सो तरिया, मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया, गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा, कर कर बाबा गावी है वज्र ताल मृदंग बाबा।

माधोरी सत्संग मिले सो तरिया, सत्संग मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

या संगत विच जेड़ा आ जांदा है उतर जांदा है, जेड़ा संगत करदा है उसका पार उतारा हो जांदा है। संगत आप भी संगत कर रहे, संगत कई प्रकार दी, पर जेड़ी संगत आप कर रहे हो साहबा ने इसनू साध संगत करके आखे, उत्तम करके के, श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के, कि संगत साध संगत भाग सत दे नाल जुड़ना साध संगत, जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उसनू आखदे ने साध संगत। ते संगत किनू कहिंदे ने?

संगत कैसी जानी है। केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम विखानी है। ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत। साध संगत मिल होए तराबा, ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी। बिसर गई सब तात पराई, इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर साहब आखदे ने जीव जदों संगत विच आ जांदा है ना, सब कुछ छड़ जांदा। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। कितना संगत विच आउण दा लाभ है, जदों संगत विच आउंदा है तात पराई भुल जांदी। इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना, वैरी भी सज्जन नजर आने लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए। ना को बैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बने आई। ये प्राप्त किवें होया,

और भी बढ़िया पंक्तियां महाराज जी की। सुख संताकरण दुर्मत धरण किलविक हरण आसरण, महाराज कहते शस्त्र संतान नु सुख देंदा है, उन्हां दी रखवाली करदा है। सुख संताकरण दुर्मत धरण किलविक हरण आसरण, जय जय जकारण सृष्टि उवारण मम प्रतिपारण जय देवन जय देवन।

मैं केवल इतनी गल तुहाडे दिमाग तक पहुंचाउणी चाहना गरीब कि गुरु गोबिंद सिंह कौन ने। कहिंदे कई भीड़ां ते मुगलां दीआं जड़ां पुट्टियां गईआं पर राय कल्ले दे परिवार दा वाल नहीं विंगा होया। इक सतगुर दा बचन उस श्री साहब नूं सत्कार नाल विराजमान, पूजा सत्कार ध्यान देना। कहिंदे समां आया ये राय कल्ले दा परिवार सत्संग चढ़ाई कर गया ते हुण अगों कौन है राय अहमद। कहिंदे उन्हां ने भी उसे तरह वो गुरु साहब का जिहड़ा निजी शस्त्र है ना उसे तरह सत्कार उहदा रख्या चढ़दी कर। कहिंदे समां आया वेखो राय अहमद भी चढ़ाई कर गया ते हुण कौन आया राय कोट। ये सब तुरी आ रही उन्हां दी अपनी कोल। कहिंदे समय अनुसार उन्हें भी जिन्हें भी 25 साल किन्ने कटे। कहिंदे जो ओ चढ़ाई कर गया तो फिर आ गया जी राय इलियास। उस तरह गुरु साहब के निजी शस्त्र की सत्कार कर रहा। कहिंदे एक दिन राय इलियास ने मुगलों के कहण से मुसलमानों के

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नर्क कही न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ए शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे, वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसर तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ए भी आख्या है

नाम इस देही दे अंदर है, जब यही तेरे ऑर्डर च नहीं है, डिसिप्लिन दे विच नहीं है और यही अंदरों गली पई है, तो फिर नाम तू किवें प्राप्त करेगा? नंबर वन, देही नू सो, देही नू काड़, इस नू डिसिप्लिन दे विच लिया। देही तंग बहुत करती है। तो बाबा फरीद जी नू पुछया, महाराज आप जी ने की कीता? क्योंकि देही बहुत किस्म दी आवाजा मार दी, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, कदे कुछ चाहती है, क्योंकि इस दी आदतां, इस दे टेस्ट, इस दे सुभा रस, जेते रस शरीर के तेते लगे दुख, पर बड़े किस्म दे रस हन जिन्हां दे नाल असी अपनी जो देही नू कमजोर बनाने हैं, इस नू खराब करते जाने हैं। और इस ते अगर कोई बंदा मास्टरी नहीं करता तो यह बड़ी आलसी हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, आलसी हो जाती है, तो इस तो ज्यादा मेहनत नहीं होती, फिर थक जाती है। कहिंदे ने इस देही नू सोध, इस दे नाल थोड़ा टफ हो। फरीद साहब आखते हैं

कौन? बड़ी कमाल की गल आखी। कहिंदे इह देही भौंकदी रहिंदी है, कदे जबान कुछ खाण नूं चाहुंदी है, अखां कुछ एंटरटेनमेंट चाहुंदियां हन। सो इत्याद देही दियां जो रिक्वायरमेंट्स हन, जो इस दियां नीड्स हन, ओह इन्नियां ज्यादा वध चुकियां हन कि देही भौंकदी है, कदे कुछ मंगदी कदे कुछ मंगदी, इसने अपना ही शोर मचा रख्या है। फरीदा ए तन भौंकना भौंकदा, भौंकदा है, सादा खा नहीं सकदा, सादा पहन नहीं सकदा, सादा ए जी नहीं सकदा। हुण जिहड़ा रंग असीं एक गुरुद्वारे च एक दिन पा के आ जाइए, दूसरे दिन नहीं पाउंदे, दूसरे दिन होर पाउंदे। ब्रेकफास्ट हर रोजाना असीं एक नहीं कर सकते, उहदी वैरायटी चाहिए, हर रोजाना तब्दील होना चाहिए। हर रोज साडे डिनर का मेन्यू अलग हुंदा है, लंच का अलग हुंदा है। कहिंदे इह देही बहुत भौंकदी है, इस दियां नीड्स रिक्वायरमेंट्स।

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए हो। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है, अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। सो इन दोज ग्लिम्प्स वी एक्सपीरियंस अवर बींग फ्री फ्रॉम थॉट्स। तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे
ਉਤਨਾ ਉਤਨੇ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੈਪਸ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਵਸਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਰ, ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਜੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਅਚਾਨਕ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਟ ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਟ ਆਵੇ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਪੰਕਤੀ ਬੋਲ ਦੇਣੀ, ਕਿਹੜੀ?

बाहर पर आई है। प्राय स्त्रीवन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह दे कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू तां कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हुण कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज है केड़ी।

योगासन पहुंचे, हजूर ने दूरू ही तक देखे। प्यारी सात संगत, जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता, वो भाई जोगा सिंह आ गए। आज जोगिया साढ़े कोल आज भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान। मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे, पर ए तो प्यार नाल पै बुला। भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे, जोगा सिंह भाई आखां जी आया, सोना सिख तू है सरदार बीबा, घर नार परिवार नूं छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार भी। भाई जोगा सिंह सोच मन, मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी, जे अंतर जामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा, जे हुशियारपुर दी करतूत नूं जाणदा होंदा तां मैनूं सजा दे। पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर, जे गुरु अंतर जामी नहीं, जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह किवें बां फड़ेगा। बारह साल एवं गुरु की सेवा की, आखो सेवा अंतर जामी सतगुरु। सोचण लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है, हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा। गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदा। हजूर ने कहा जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने तकिया, इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरां नीवियां। हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा, तकदा फिर खां। तीजी वेरी जसेले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक। भाई जोगा सिंह ने जसेले कलगीधर पातशाह वल तकिया, भाई जोगा सिंह हैरान हो गया, कंबण लग गया। की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोहणे तख्ते बहण वाला ते राती वेसवा दे चवारे ते पहरा देण वाला इको ही है। दोवे हजर रो पिया। भाई जोगा पातशाह मैं पापी हां, मैनू बख्श, पर मेरा जेड़ा पोल है संगत च ना खोलो। आखो श्री भाई अगे पिछे सजा दे लिया, जे संगत च बोलना था। हजूर कहण लगे जो गया मैं तो तेरी करतूत नू वेख के अडिठ पिया करदा, पर तू कहण लगा तेरे मन च फुरना बढ़िया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं। मैं तो सब कोई हर अंतर जामी जाने फिर बोलत आप, ते तू कहना गुरु नू पता है नहीं। तो भाई जोगा सिंह कहने लगा महाराज ए भी चंगा होया, आज पता लग गया है कि तू अपने सिख दी रखिया कर। कलगीधर पातशाह जी कह लगे एदा मतलब भाई जोगा सिंह तो मेनू अजमाया है, मेरी अजमायश की थी है। भाई जोगा सिंह चुप कर गया, ते माद गुजरी दे लाल दे सामने तकिया ते क्या जो गया मैनू अगे भी सिखा ने बड़ा अजमाया, पर मैं इम्तिहान च पूरा उतरिया, अजमायश च पूरा। पहले जामे विच सिख ने अजमाया, बाबर दी जेल च अरदास कीती, मैं उथे पहुंच के ते बाबर दियां चक्कियां पीटी। पंजवे जामे च दिल्ली दी संगत ने अजमाया के चंदू हंकारी दा नाता नहीं लै। तो जो गया मैं संगता दा हुक्म सिर मथे रखे, जे मैं कुड़माचारी दी असीत च चंदू ने कर जांदा, चंदू मेरे ते फुलां दी वर्षा करदा, पर मैं अपने सिखां दा हुक्म मर के जिसले चंदू दे कर गया तां चंदू ने मेरे ते सड़दी बलदी रेत पाई। पर मैं अजमाइश ही पूरा बिधी चंद ने मैनू अजमाया, छेवे दुशाले लैके भजा जांदा पिछे बादशाह दी फौज आ। बिधी चंद ने छेवे पातशाह दा ध्यान करके पठियारी दे बलदे पट विच छाल मार। हजूर कीर्तपुर बैठे सिखो बड़ी गर्मी हो रही है जल लियाओ। छेवे पातशाह जी दे शरीर ते जिस वेले जल पाया सिंह ने तकिया हैरान हो गए कि साहबां दे सारे शरीर ते छाले छाले हो। अधूर कहन लगे जो गया फिर बिनी चंद नू तत्ती वारी लगन दिती,
وہ ساری گرمی اپنے اتنے لے گئے پر تو کتنے ازمایا حضور دے نیتر سجن ہو گئے تے کہن لگے کس طرح کسی مہاپرش نے لکھا ہے بہتی لوڑ جے سائی ازماؤ بے

0: बादशाह मेनू बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखा थानी पानी बन के बाहर नहीं निकल। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई भूल गया। रो रो के भाई जोगा सिख का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी ध्यान न पढ़ो।

a non sa da far carche che tam di smarti arras avegi hukm nam kra prasad di de bachiyan vallo gurmukh parivar vallo jo seva hai oh vi pravan karni to aao hum anand sahib da paath sare mil ke kariye an guru nanak paadshah meherwan sadguru aap ji de pyar wale gur sikh mai bhai saheb ji jinan nu aarti ne bakhshish karke e daat bakhshi aur aap ji de darbar hi jud ke aap ji de bakhshya khazane vich सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे कीर्तन भेज गाउण अरदास कराउंदे हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चियां नाम दान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

अपने सिंघासन ते बैठे बड़े हंकार विच मैं बादशाह। कुछ निंदिया चुगली करने वाले भी खड़े हैं, बादशाह दे दरबारी भी खड़े हैं। कबीर साहब जापो।

बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंतर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंतर में शब्द, रंग हाय मुख्तलिफ दारित बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

मृदंग ते के तक तक ताके मृदंग बाजे ओ बदरवा आए घनन घनन करे मेघवा बरसे बिजली कड़के तड़क तड़क करे जिस तरह बिजली कड़कती है जिस तरह बदलों के बिजली गरजती है इसे तरह मृदंग दे बोल।

0: तब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: सब मिलके करो कीर्तन।

बाबे ने आख्या ओए चंद्रया असी कुछ तेरे कोलों मंगण नहीं दे आए असी ते तेनू प्यार करके तेरी मित्रता करके तेनू मिलन वास्ते आए हैं। बाबा जानी जान है बाबा ते लोक परलोक दी सोझी रखदा है बाबे दे ओले की हो सकदा है। गुरु नानक दरवाजे ते खलोते आवाजा मार रहे ने ओए मित्रा चंगा तू मित्र है इन्नी प्यार नाल तैनू मिलन आए हां ते तू अंदर लुकिया बैठा है। संसार है घर परिवार दे आखे लग के ए जीव कई बार बुजुर्गां दे नाल इहो जिहियां गल्लां करदा है पर सतसंगियो बाबा नंद सिंह जी बख्शिश करदे सन जिहड़ा इंसान अपने बुजुर्गां दा सत्कार नहीं करदा बुजुर्गां दी संभाल नहीं करदा वो कदी भी गुरु नानक दी नजर विच बख्शिया नहीं दे जांदा।

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन कि ऐसा शाह इको एक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साहिब फरमान कर रहे हैं।

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली हूं। वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जत्थे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तां है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है।

जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावा। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई हो जा जिड़ा मेरा पार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। आ जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तकरिया है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है? भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जांदा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्ने भी लियाए सन सब ने भेटा दे देती है। ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे चंगा वे गरीब जे तू नहीं आना ते मैं तेरे कोल आ जांदा। जदों सतगुरां ने इन्हीं गल आखी ना बैराग दी हद ना रही अखां दे विचों हंजो घेर आए संगत दे विच तुरे आ रहे ने ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं।

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पया पद निर्वाणी।

सवारे अमरा गुण अवगुण ना विचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक तारिया अपने बालक आप रखियन पार ब्रह्म गुरुदेव सुख शांत सहज आनंद भय पूर्ण भई सेव भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जिवालियन जा का वड प्रताप दोख हमारे बख्शियन अपनी कलतारी मन बांचत फल दित्यन नानक बलिहारी।

मैं तेरे रस रस गुण गाऊं, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाउने, एक है रस रस गुण गाउने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया मेरी सुरत तेरे चरण

आप केस सुखा रहे हो। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान भी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे, आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मताबे गमजे मैं गाने हूं, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे

लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया है, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा चुकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जाते हैं बलिहार जाते हैं उन्हां दा ए लोक भी सुखी होंदा है परलोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई साहब कहंदे न हर दो आलम कीमत यक तार मुए यारे मां मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते ऐ यारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करते हां कि तेरे चरणा नाल साड़ी सांझ बन जावे साड़ी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रही।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ए ते ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ए सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हां।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

सका फिर देखे प्रीत मां मैं नीर वहे वह चले जी। अज सतगुरां ने प्रीत नु तोड़िया जदो सहदे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नु याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते ते दूरों ही उची उची कहन लगा सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है तू निमाणिया नु मान देना जेडे तेनू याद करदिया नु उन्हां नु दीदार देना पर अज जानिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है तू सचमुच ही निमाणिया नु मान देना जेडे तेनू याद करदिया तू उन्हां नु दीदार देना। सतगुरां दे दीदार कीते अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए बेड़ी दूसरे कंडे लै गया ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए ते अज सतगुरां ने इशारा कर दिता दया सिंह इस गुरु नू इस गुरु प्यारे नू कुछ कुमोरां दे गरीब सिख है मजदूरी करदा सारा दिन मेहनत करदा अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती कुछ मोहरां दे भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां ते जदों सहदे नू मोहरां देण लगा ते सहदा पुब्बां मार के रो पिया ते कहण लगा ओ पाछा ओ मैनू मोहरां नहीं चाहिए मैनू धन नहीं चाहिदा दुनिया दे लोक आउंदे हन मैं उन्हां नू भी दरिया पार कराउंना हां मोहरां दे जांदे हन धन दे जांदे हन अज तुसी आए हो तुहानू भी दरिया पार कराया तुसी मोहरां दे गए ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा है मैनू धन नहीं चाहिदा मैनू मोहरां नहीं चाहिदियां ते साहब अज प्यार दे विच वस होके कहण लगे सहदे आ फिर की चाहिदा मंग की मंगदा अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला नेत्रा जो जल वेंदा ते हाथ जोड़े ते कहिंदा मोहरां देख के गलो ना ला मैनू किते शकल ना मेरी विसार छड़ी अज तुसी आए ते मैं पार कीता कल नू मैं आवां मैनू कार छड़ी बस होर कुछ नहीं तेरे को मंगना अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है ते कल नू मैं संसार छड़ के आवां मैनू भव सागर तो पार कर दे होर कुछ नहीं मंगना ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया ते घुट के कीता प्यार अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता ते साहिबा ने भी कहा ओ सहदे आ तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने अज असी आए ते तू पार कीता जा इक्की कुलां तेरियां सारियां जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं तेरियां इक्की कुलां दा उधार कर देंदा आओ भाई घर विच ये तो गुरमुख हो जावे इक्की कुलां दा भी उधार कर देंदा है घर विच इहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे दर्शना दी तांग हर वक्त मन विच वैराग जी दे होवे इक्की कुलां दा उधार

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी, वो कवि भी सी, 52 कविया विचो। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए, कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो? इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, है दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, इह उहनूं दिंदा जिहदे ते उह कृपा करदा। इस शब्द विच भी इह मंग मंगी है, ऐसी कृपा मोहे करो, तेरे बख्शियां दे चरण होण ते मेरा मथा लग जाए, सात संगत दी चरण धूड़ प्राप्त होए।

0: पंचम और ऋषभ का मेल देखना।
1: पापा पापा पापा परे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे रे

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। घागड़ी धर्म धृग तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम तिरना, तागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। यह साहब जी ने तराना गाया। तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने, सरगमा लगानिया और ताना लगानी। कुम किरना नाल दे दे ताल, दागड़ी दे दे ताल। जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ। ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल के विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घुम किरना नाल पलटे लगाओ, सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नाते कौआ हंस होए अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर नव लाया सब लाथे किल वेख पंग

श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासू शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।

बिसर गई सब तक जब ते साध संगत मोह रहाओ ना को बैरी नहीं बेगाना सगले।